एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चकर चेहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कहना सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साह सहान गणिजाय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत मन तृण कहत त्वय सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत समत नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही न जाय सोडी श्रेष्ठ सकल तारण कौ अब गुरु रामदास कौ मिली बड़ाई हम तनवंत भगत सचनाई हर गुण गावे सह सपाई पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निधाना रतन लाल जाका कछु न मोल भरे भंडार अखूट अतोल खावे खर्च हिरल मिल पाई तोट न आवा बद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखा।

जान को कृपा करहु जग जीवन, जन नानक पद सवारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जान को कृपा करहु जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा, घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो हर सेवह संत भगत, तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख

दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वच धर्म हदूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर जिनी

पौड़ी वटी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तवा रंग प्रंग ने कना जापन करतवा जिया अंदर जियो सबके जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर पला तेरा कर आनंद बधाई तुद कर मन महत्ता तेज अपना आप जर।

श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आया।

पुरख परखोतम बाणी स्यो चित लावै गो गुर बाणी सुनत मेरा मन ध्रव्या मन भीना निज कर आवै तह अनहद धुनी बाजहे नित बाजे नीजर तार चवावै गो।

0: बिन बता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदू करमी आपो आपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गे मशक्कत का नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी ना।
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी।

जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग यासा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम पारा। सब त्यावह सब त्यावह तुत जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जीअ तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट यंत्र सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हव तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेव्या मेर हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हरन का नेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापह जपे बेअंता। तेरे अनेक पढ़े ब सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खंड कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परंपर करता जी, तू जेवड़े अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करे सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब पाई जी, तुदे आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हो पाई रहा। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया।
ਤੂੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਅਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰਣ ਭਈਲ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੋਂ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮ,

आप जी दो पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे

जग और न जाहे महातम में अवतार जागर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पिया ए पद्धत ते मत चूकह रे मन भेद विभेद न जान बिया प्रतक्ष हृदय गुर अर्जुन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लिया गुर के चरण जीव का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन में तारा कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम त्याया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सो

जत शरी महला चौथा जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बंजा तिन सुन्नी दे फिर बिन नावे ओए खप खप मोए करंजा जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बंजा तिन सुन्नी दे फिर बिन नावे खप खप।

जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा, रहा हर कीर्त कल युग पद उत्तम, हर पाइए सतगुर माजा। हो बलहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन

सब किल बिख गए गवाजा। सतगुर साह पाया वडदाना, हर किए बहु गुण साझा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर तारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लिखा समझा। जिनका कृपा करी जग जीवन, हर उर तारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लिखा समझा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास।

सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गोर रामदास राखहु सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहन सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु काय, जन्म मरण दुख जाय। होवा सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सहादा साहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सहादा साहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह।

हर हर कृपा तार मधुसूदन मेल सतसंग उमाराम मेल सतसंगत संग गुरा पूंजी नाम गुरमुख वेसा हर हर कृपा तार मधुसूदन।

देह नानक नाम ओ महाराम। सब कर्म धर्म हर नाम जपा, किल विख मैल पाप धोआ। दीन दयाल हो जाने पर

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो। सर्व

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगा।

दुख दारु सुखरोग भया जा सुखताम न हो। तू करता करना में नाही जाओ करी न हो। बलिहारी को तवसया।

0: गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन को हुन धर्म तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछुना विचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल में पव सागर पार उतारण को नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी तन सतगुरु सेविया जिस पसागत गम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यथ जन्म का लुचर गुर परस्यो अमर प्रगास
1: जब लौ नहीं भाग लिलार उदय तब लौ परमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र में बूढ़ थे कबू मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
2: ज्योत रूप हर आप गुरु नानक हायो ताते अंगद पयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरथ छतर गुर्राम दियो गुर्रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नैन
3: गुरु गुरु गुरु करमन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद सब जिसके रे फुन दुख नाश सुखदायक सुरो जो धरत ध्यान पसत नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देख तक।

फुन बांधी साठ कठोर कुचेल को ज्ञानी तावत परमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जौबन रूप माया मद माता विचरत बिकल बडो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी ये महे हेतानी बलवंश शप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी सील

0: दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए।
1: सतगुर के मा दानिया जुग जोत समाने, अनपो ने जा नाम टेक जित भगत गाने। गुरु नानक अंगद अमर, भगत हर

0: गुरु अर्जुन पुरख प्रमान पार्थो चले नहीं निज नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो।
1: अंत न पावत देव सबे मनो इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे तरी।
2: तीन पवन भरपूर रहो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई आपन आप आप ही उपायो सुर नर सुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुर असुर नर गण गण धर्म खोजंत फिरे।

गोरे राम दास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए, दर्शना परसया गुरु का

वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा। नाला की कीमत मित कही न जाए, से जान तन जैन एक नाम लिव लाए। गुरमत साची साचा विचार, आपे वख से दे।

साम कहे से तंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब को सत समावे ऋग कहे रहे प्रभु राम नाम देवा महसूर नय ले प्राचर जय नानक तो मखन त्रिपा जुज में जोर चली चंद्रावल कान किसन जादम पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया काल में बेद